वीकेंड आ रहा, मौसम बहुत प्यारा खूबसूरत, गर्मा गर्म है, धुप निकली है पूरी। सो एंजॉय करो इस खूबसूरत प्यारे जी वेदर नूं, ते थोड़ी जी वेदर दी होर भी इंजॉयमेंट नूं वधाउणी है यार। कठे गीत संगीत सुनिए, गल्लां बातां करिए, रौनक मेला फुल बटा फुल। 9 बजे तक असीं तुहाडे नाल, 9 बजे तक भंगड़े भी पैणगे, गिद्धे भी पैणगे, गावांगे खूब, ते खाओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर किस दा दिखायो ना, ते दारू पी के गड्डी चलायो ना।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है यार, अमेजिंग। सो प्रोग्राम है पंजाबी रा ते स्टूडियो दा नंबर 9056733337 9056733337। ते गलबात थोड़ी साडी हो रही है ते जरूर एनी टाइम कोई भी गीत संगीत सुनना दस दिया करो। इंस्टाग्राम से बड़े थोड़े मैसेज आते रहते हैं, थैंक यू। कोई भी नंबर चाहिए किसी भी बिजनेस परसन किसी भी साडे स्पॉन्सर्स दे, इंस्टाग्राम पेज है साडा पंजाबी लहरा PUNJABILEHRAN इंस्टाग्राम से मैसेज कर दो, थोड़े लिए कोई भी नंबर चाहिए हाजिर ने। मनजीत साढ़े नाल ने अपलायंस जंक्शन तों, मनजीत वेलकम।
1: थैंक यू सो मच नवी, प्रोग्राम सुन रहे सारे श्रोतियों मेरे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल। इस वीक दियां स्पेशल डील्स ने, सब तो पहले जिन्हें भी क्लाइंट इस टाइम अपना किचन रेनोवेट कर रहे हैं, बिल्ट इन अपलायंसेस दा पूरे दा पूरा कॉम्बो सैट है, जिदे विच 36 इंच दा आइस एंड वाटर डिस्पेंसर वाला काउंटर डेप्थ बिल्ट इन फ्रिज, 36 इंच दा बिल्ट इन कुकटॉप, 30 इंच दा बिल्ट इन वाल ओवन ते माइक्रोवेव कॉम्बीनेशन विद बिल्ट इन स्टेनलेस स्टील दी डिशवॉशर, $13,000 दी वैल्यू दा पूरे दा पूरा बिल्ट इन अपलायंसेस दा बंडल है, जिहड़ा कि सिर्फ $6,999 च इस वीक तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। जिन्हें भी इन्वेस्टर इस टाइम प्रोग्राम सुन रहे ने, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे पांच अपलायंसेस दा कॉम्बो है, जिदे विच 36 इंच दा फुल साइज फ्रिज, ग्लास टॉप वाला इलेक्ट्रिक स्टोव, टॉल टब दी डिशवॉशर विद वॉशर ते ड्रायर, $5,500 दी वैल्यू दे पांच अपलायंसेस दा कॉम्बो है, जिहड़ा कि सिर्फ $3,199 च इस वीक तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। ते लास्ट दे विच नवी सॉकर वर्ल्ड कप आ रहा, सो सैमसंग दा एक नवा टीवी आया मिनी एलईडी करके, जिदे च सॉकर मोड है, उदे विच प्रॉपर सॉकर दे रिलेटेड उन्होंने कंटेंट जिहड़ा पाया, जिदे विच थानू ग्राउंड दा कलर वगैरह पूरा लगेगा। 65 इंच दा टीवी है, जिहड़ा कि $1,300 दी प्राइस तो एक्सक्लूसिव घटा के $899 च सॉकर मोड वाला मिनी एलईडी सैमसंग दा नवा टीवी है, 65 इंच दा तुसी लगा सकदे आ। दो लोकेशनां तुसी सर्व करदे आ, ब्रैम्पटन वेस्ट मिसिसागा स्टील्स ते ब्रैम्पटन ईस्ट एयरपोर्ट रोड एंड क्लार्क। नंबर टू कॉल इज
0: 905-450-0054, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਵੀਂ ਯਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਟ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 60 million ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ, 60 million ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ 60 million ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਸਡੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਸਰਾਸ਼ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
0: ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਾਸ਼, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ?
2: ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਇਸਮੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ अभी के टाइम पे, आज के टाइम पे जो 2 महीने रह गए और 2 बैच रह गए हैं इस एकेडमिक ईयर को, तो उसमें रिक्वायरमेंट लाइक आपकी होनी चाहिए कि आपके पास स्टेटस पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन का होना चाहिए, एंड आपकी इनकम जितनी कम है, ज्यादा नहीं कम है, उतना आपको ज्यादा बेनिफिट है। स्किल हासिल करें, 30 से 100,000 की फंडिंग अपने अकाउंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट से हासिल करें, सूखे जे कोर्सेज ने जी, एंड आज के टाइम पे जो हाफ अमाउंट आपको आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, दैट इज नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स, और सारा अमाउंट को कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं जी। इसमें कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं होती है इसमें, तो देयर इज नो कोलैटरल, नो सिक्योरिटी, कोई कैच नहीं है जी इसके अंदर।
0: ठीक है, क्या बात है। नहीं नहीं सराश, नाल दी नाल तुसी ये दसो, जे फैमिली है कोई ते सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मीट कर दी है, तां उन्हां दी कितनी इक ग्रांट बन जाती है?
2: डिपेंड करता है आपके फैमिली साइज पे, अगर आपके नंबर ऑफ किड्स ज्यादा है एंड अगर आपकी इनकम कम है, 2024 का नोटिस ऑफ असेसमेंट अभी देखा जा रहा है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप कहेंगे आपकी इनकम 25,000 है, वाइफ की 30,000 है एंड आपके 3 किड्स है, तो आपके अप टू 100,000 की फंडिंग बनती है, जिसमें से हाफ पैसा $50,000 इज नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स, और कहीं भी आप सारे अमाउंट को कैसे भी खर्च कर सकते हैं। और जो लोन भी होता है ना, वो आपने अगर एक साल का कोर्स है तो 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करना है। शुरू में ब्याज दर है 0% 1 से 1.5 साल, उसके बाद ब्याज दर है 2.5% पूरे साल का। हमें कॉल्स आते हैं, अभी कॉल आए जैसे हस्बैंड वाइफ है, ओल्ड है, सीनियर सिटीजन है, तो उन्होंने बोला कि हमारी कितनी फंडिंग बनेगी। हमने उन्हें बोला भी आपको नेट ग्रांट आ रही है $14,000, क्योंकि बच्चे नहीं उनके, राइट, 1% पड़ेगा दो में से, फैमिली ऑफ टू में से। तो उन्होंने बोला अच्छा इसमें से कॉलेज की फीस जाएगी। मैंने कहा नहीं, कॉलेज की फीस माइनस करके बताया मैंने आपको $11,000। तो मतलब लोग अभी समझते हैं कुछ कैच होगा, देयर इज नो कैच इन इट। हाँ, मैंने एक बार जरूर बोली उनको, अगर आप 1 अगस्त के बाद आएंगे फैमिली ऑफ टू में, आपको जो आज 14,000 की नॉन रिफंडेबल ग्रांट जो आपको कॉलेज की फीस माइनस करके आपके खाते में आ रही है, साथ में 17,000 का 0% पे लोन आ रहा है, 1 अगस्त के बाद सारा ही लोन आएगा, ग्रांट वर्ड यूज ही नहीं होगा उनके केस में। तो अभी फायदा है, अभी एनरोल करें, फंडिंग हासिल करें, सोखे चे कोर्सेज करें, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक।
0: नंबर है सरांज दा, तुसी हुणे लिख लो 4372643175 4372643175 सरांश, कोर्सेज केड़े ने, डॉक्यूमेंट केड़े लगदे आ?
2: हाँ जी, कोर्सेज ज्यादातर क्लाइंट्स चूज ही करते हैं, लाइक फुली ऑनलाइन कोर्सेज। अब आप हमारे क्लाइंट ज्यादातर हैं 40-50 साल के, तो हम उनको उन कोर्सेज में नहीं डालते जहां वो बैग पैक लेके, लंच बॉक्स लेके कॉलेज जाएं। कोविड के बाद से फुली ऑनलाइन कोर्सेज मिनिस्ट्री ने अलाउ कर रखे हैं। फुली ऑनलाइन कोर्सेज है मैनेजमेंट के, अकाउंटिंग सीखें आप, 3 घंटे आपने देने मंडे टू फ्राइडे। कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो सेल्फ स्टडी मॉडल पे हैं, उसमें आपका एफर्ट कम लगता है, बहुत इजी है वो। साथ में अगर आपको HVAC जैसे स्पेसिफिक कोर्सेज करने हैं, प्लम्बिंग वाले, अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट, PSW, वो भी है, सारे कोर्सेज गवर्नमेंट फंडेड है। आपकी जेब से पैकेट पैसे नहीं जा रहे, उल्टा आपकी जेब में लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में पैसे डायरेक्ट डालती है, मेरे में नहीं, आपके अकाउंट में। 30 से लेके 100,000 की फंडिंग, जिसका हाफ पैसा क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स।
0: नंबर सरांश दा 4372643175 4372643175 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਸਰਾਸ਼ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਲਦੀ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਰਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੱਚੋ ਕੇ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੋਈ ਇਸਮੇ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ। ਉਲਟਾ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਕਮ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿਸਪੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਤੇ ਹੈ ਇਸਮੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੈਚ ਇਨ ਇਟ। और लाइक इसमें आपका सर्विस कैनेडा नाम का डिपार्टमेंट है, वो डील करता है, CRS लोग डरते हैं तो वो डील नहीं करता है इसको। और गवर्नमेंट आपके अकाउंट में फंडिंग 30 से 90 डेज में डालती है, ये नहीं कि आपने आज एनरोल करा कल डाल दी, नो, पहले आपके डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को जाते हैं, 30 से 90 डेज में असेस करते हैं, आपको एस्टिमेट तो वो भी दे देंगे, फिर फंडिंग रिलीज होती है। तो ये नहीं कि पहले सीबा लोन की तरह नहीं आज पैसे दी कल मांग लिए, ना, पहले असेसमेंट गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, हमारी फीस काम होने के बाद $199 से $499 है, कोई परसेंटेज कोई कमीशन नहीं है। जैसे गवर्नमेंट इतनी चीजों में, फॉरेन एड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर उधर लगा देती है, वैसे गवर्नमेंट एजुकेशन इन्वेस्ट करती है, कोई कैच नहीं है जी। कॉल करें 4374-3175 हुणे कॉल करो 4372643175 4372643175। साडा प्रॉपर ऑफिस है जी, 1,000 square feet का, 200 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे। हम टिम हॉर्टन पे नहीं मिलते क्लाइंटों से, हम 7 years से

0: Mohan. Contact us at richmohan.com.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो अज ही सानू कॉल करो 647-504-1

संगीत, देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां लबरेज, महकंदी सौगात मंडरा

0: वीजे री सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील लई याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
5: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
6: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं।
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
8: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: 8150 ਟੋਰਗਰਮ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 1 905-799-8877 sofastudio.ca ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ
1: मैं नवा कर लिया तेन पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है एक बाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी नाले मैं सोचदा वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए हुन समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कित्थों लईए
2: ओ जी एदे च समझण वाली केड़ी गल है सारे कम वाले इक्को जगह चलो मिसेस अगर स्टील ते अप्लायंस जंक्शन ते इनदे प्राइस ते सर्विस नु कोई बीट नहीं कर सकदा तुसी 6 मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकदे हो सारे ब्रांड्स दी ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने मिसेस अगर Appliance Junction. Call 905-450-0054. 905

0: या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900
1: भाई ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही ले लवां पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां
2: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नू कॉल कर ओए ओदे तो वधिया कोई नहीं
3: जी हां जे तुहानू यूज ट्रक दी लोड है तो तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसी इना तो ले सकदे हो अपना ट्रक वेचण लई भी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन कॉल बिल सेखो 416-819-6000
0: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900
4: आप पंजाबी आ गए
5: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.

कैसे लफ्ज आ यार, मैं तो हैरान हूं। सुपने विच तेरी सूरत वेखी हो गया दिल दीवाना है। लिखण वाले बंदे कैसे कमाल दी चीजा लिख गए यार। बस एहो जे गीत तुसी जिन्नी वारी मर्जी सुनो तुहानू ऑलवेज नवे लगदे आ। तुहाडी फिर हुण कह देवां ना कमा, फिर कई बंदे गुस्सा ही ना कर लैण। एहो जे गीत तां बस इदां लगदे जिवें तुहाडी थोड़ी देर बाद करना, हाले 2 मिनट हैगे अपने कोल।

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव ट्रावलर शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्ज दिन अच्छा गुजरिया होएगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के किरण जी वतनो दूर प्रोग्राम पेश करनगे, मनप्रीत जी इंडिया तो खबरां पेश करनगे। तियां आ गईयां। सब तो पहला छतरी जात रिपोर्ट है। 5:41 ते सूरज सिंह आया, 8:48 ते चले जाना मामा चांस, 6:42 ते शाम नू आएगा ते 3:49 ते चले जाना। इधर तापमान 24 डिग्री मोस्टली सनी, कल नू 27 डिग्री मोस्टली सनी, सैटरडे नू 22 डिग्री सूरज चमकता रहेगा, संडे नू 22 डिग्री मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, मंडे नू 21 डिग्री सूरज चमकेगा और ट्यूजडे नू 26 डिग्री तापमान रहेंगे। सुखी जी प्रोग्राम स्वागत है।
1: थैंक यू देव जी। सब तो पहला तुहानू ते सारे लिसनर्स नू मेरे सुखी वालों प्यार भरी सत श्री अकाल।
0: क्या हाल चाल है?
1: बहुत वधिया जी, तुसी सुनाओ।
0: वधिया चाहिए रहा, वधिया चाहिए रहा। अपने रियल स्टेट दे विच मार्केट थोड़ी जी चली अगे नालों।
1: हां जी,
0: खास करके नवे घर च
1: 100%।
0: सो नवे घर दे नाल नाल जेडे पुराने घर आ
1: जी,
0: कोई 2 साल पुराना, कोई 3 साल पुराना, उन्हां दी मार्केट भी हुण तो हौली हौली उपर जाण लग गई।
1: हां जी देव जी, अजकल आपां देख रहे हां एज रियल्टर्स की घरां ते जिद्दां पहला मल्टीपल ऑफर्स आ रहियां सी आउणियां शुरू हो गईयां। हालांकि प्राइस ए नहीं हैगा कि दे आर गोइंग स्काई रॉकेट, प्राइस च ज्यादा वाधा नहीं आया, बट प्रॉपर्टीज सेल होणियां शुरू हो गईयां ने। बायर्स मार्केट दे विच आ गए हैं जिहड़े काफी टाइम तो वेट कर रहे सी।
0: ते अपनी पहली लिस्टिंग केड़ी है अज?
1: हां जी देव जी, सब तो पहला दसना चाहूंगी कि ब्रैम्पटन दे विच प्रॉपर्टी आपां लिस्ट करनी आ, हले एमएलएस दे उत्ते आई नहीं हैगी। डीटेच घर आ, स्टील्स एंड चिंकूजी दा रोड दा एरिया हैगा आ, 4 बेडरूम दा डीटेच घर आ, तुहानू 2 बेडरूम दी लीगली फिनिश्ड बेसमेंट मिलूगी
0: जी।
1: So that means ओदे विच किचन भी हैगी, सेपरेट एंट्रेंस भी हैगी, 2 good साइज दे बेडरूम विद बिग विंडोज। मार्केट दे विच आउण तो पहला प्रॉपर्टी देखना चाहुंदे हो या तुहाडा कोई भी क्वेश्चन आ, तुसी मेरे नाल गल कर सकदे हो।
0: मेजर इंटरसेक्शन केड़ा जी?
1: स्टील्स एंड चिंकूजी रोड।
0: ओके,
1: एंड जिहड़ा इहदा ड्राइववे आ ओह एक्सटेंडेड हैगा, तुसी ड्राइववे दे उत्ते 5 गड्डियां पार्क कर सकदे हो 2 गराज दे विच। सो टोटल 7 car पार्किंग इन ब्रैम्पटन। डिटैच कर, डबल कार गराज दा लेना चाहुंदे हो, मार्केट च आउण तो पहला वधिया प्राइस दा फायदा उठना लेना चाहुंदे हो, तां सुखी नूं कॉल कर लो जी, 647-408-7066-647-408-7066।
0: सुखी जी, ईद ते बकरे दी कुर्बानी दित्ती जांदी, झोटियां दी कुर्बानी दित्ती जांदी
1: आ। हांजी,
0: डोनाल्ड ट्रंप नूं बख्शता।
1: बफलो
0: सी ओदा नौ ही, उन्होंने ट्रंप रखा हुआ सी। राइट है, ट्रंप ओदा नाम रखा जी, कहने ट्रंप नूं बख्शता। एनीवे, अज मई 28 है जी, $100 ऑफ दिता जा रहा है कस्टमरां दा धन्नवाद करन लई, जदों ट्रकां दे ऑयल चेंज कराओगे। क्विक ट्रक लूप जिहड़ी नैपनी वाली लोकेशन है, फ्री बारबेक्यू चलेगा, फ्री ट्रक ग्रीस होगा सारा दिन, और अज जा सकदा, अज लास्ट डे है, इको ही दिन लास्ट डे की है, अज दा दिन ही है, तुसीं इस सेल दा फायदा जरूर चुको। और इहदे नाल नाल अपने जिहड़े एवरेस्ट ट्रांसपोर्ट वाले आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਰਨ ਨੇ, 3,000 ਮੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਈਸਟ ਲਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 9058-846-2229-8462229 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 4। ਗਏ ਔਰ ਆਏ ਜੀ, ਸਟੇ ਟਿਊਨ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किसतों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets si pal de vichu Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services di pal de vichu puri family vacation upper jaan di soch rahe ne jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna va ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upper call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection open.
5: Nobel Fresh Foods ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਅਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿਉ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ। 2945 ਸੈਂਡਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ, ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 20 ਗਲਿੰਗਹਮ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਟਨ। ਫੋਨ 2898010566 ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ।
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
6: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: विमला विलेज ला विलेज पढ़ दी पीओ चंट पढ़दा। विमला विलेज ला विलेज, विमला विलेज ला विलेज पढ़ दी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया आटा दाल चावल दाल सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 किलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन फोन 2898010566 नोबेल फ्रेश फूड
3: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
3: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
5: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji 647-822-9607
6: यारों के साथ जश्न या फैमिली के साथ करना हो जश्न ढाबा ऑन द फॉल्स आए टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा
7: किल्ली वाला बटर चिकन रोगन जोश सोया चाप बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स फ्री पार्किंग विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स कॉल 905-358-0864
6: 905-358-0864 ढाबा ऑन द फॉल्स
8: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है
9: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500 416-817-6500

0: क्यों? क्योंकि डग फोर्ड ने किया अंटेरियो हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स हैगी इत्थे, बहुत पढ़े लिखे स्किल्ड वर्क काम करने वाले हैगे ने, साडे कोले काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हैगे आ, हाई टैक सैक्टर भी आ, न्यूक्लीयर टैक्नोलॉजी तो पावर प्लैंट तक भी है आ। पर गल तो यह है दोस्तों, उम्मीदों तो अलावा इन्हों को कुछ भी खास तो है नहीं इस इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए। तो सरकारी ही डाटा साफ दिखाता है कि अज के दिन फिलहाल पूरे ओंटारियो दे विच तां डिफेंस सैक्टर दे विच मसा 300 फर्म्स हैं जो कि कुल मिला के 13,000 लोगों को इंप्लॉय करते हैं। सो 300 कंपनीज 13,000 इंप्लॉयज़। सो नवा सैट किया गया 10 साल के 43,000 मोर जॉब्स एड करनिया, 6 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करना, 400 मिलियन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना, तो एक बहुत ही बड़ा एक उम्मीद ही लगती है। तो सानू पता ही है कि पॉलिटिशियंस ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर ही करते हैं। सो देखना पड़ेगा कि यह मिलिट्री डिफेंस स्ट्रैटेजी फॉर ओंटारियो काम करती भी है कि नहीं।
1: अच्छा?
2: आ गया मैं।
1: चल आजो आजो।

0: $70,000 से तो ही आपको इसका एडवांटेज है
1: जी।
0: और अगर आपका फैमिली साइज ज्यादा है, नंबर ऑफ किड्स ज्यादा है तो और भी ज्यादा एडवांटेज है। ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है।
1: तो मतलब 70,000 तो घट जेड़ा जिदी इनकम है T4 दे उपर या नोटिस ऑफ असेसमेंट दे उते वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। पर ऑल्सो डिपेंड करता है फैमिली किवें दी है, किन्ने बच्चे है फैमिली दे विच, राइट,
0: या फिर मैरिड है
1: जी।
0: सिंपल मैरिड को भी अप टू 45,000 की फंडिंग आ जाती है
1: जी।
0: एंड इसमें अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है
1: जी,
0: उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर
1: जी जी जी,
0: अनएम्प्लॉयड, सिंगल मदर, आपको और ज्यादा बेनिफिट है। तो लाइक ये रेंज हम रेंज को देते हैं क्योंकि किसी के 30,000 की फंडिंग है, किसी की 100,000 की है
1: जी।
0: अगर आपकी इनकम कम है, फैमिली साइज ज्यादा है तो अप टू $100,000 अगर फैमिली ऑफ फाइव है
1: जी।
0: ओके जो कोर्सेज कर रहे हैं, आप स्किल डेवलप कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको आपके अकाउंट में, मेरे नहीं जी, आपने देख लिया आपको सारा मैंने दिखाया सिस्टम,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ जी, मेरे अकाउंट में फंडिंग नहीं आती, हमने कोई कैच रखा ही नहीं, एंड टू एंड गवर्नमेंट का प्रोग्राम हम सिर्फ जरिया है
1: जी,
0: आपके अकाउंट में फंडिंग डायरेक्ट आती है और इसमें कोई कैच नहीं है।
1: क्या बात है। अपनी जो सारा काम हो जाता है पैसे अकाउंट के विच आ गए ते अपनी फिर फीस की होती है?
0: हाँ, सबसे बड़ी बात हम फीस काम होने के बाद लेते हैं।
1: ओ वेरी गुड।
0: बंदे हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि सर किसी ने हमसे 2500, किसी और एजेंट ने 2500 पहले ले लिया, 3,500 पहले ले लिया, हम तो बाद में लेते हैं।
1: बचो ना, तो बचो है,
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल बचो जी।
1: हाँ।
0: अब हम, अब मेरा नाम आपको, आप मेरे को मेरे नाम से बुला रहे हैं, पूरा नाम ले रहे हैं आप मेरा
1: जी,
0: मेरा नाम टोनी तो है नहीं
1: जी
0: ऑन एयर पे, है ना,
1: बिल्कुल
0: असली नाम है, असली काम है, असली नाम है
1: जी।
0: इसमें असली कागज लगते हैं आपके जी, नोटिस ऑफ असेसमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट और ये भी हो गया
1: जी।
0: थोक की फीस हम बताते हैं $199 से $499 है, डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम, कोई कमीशन, कोई परसेंटेज है ही नहीं
1: जी।
0: फीस भी काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी से देनी है
1: जी,
0: तो कुछ इसमें हमने कैच रखा ही नहीं है। उल्टा हमारी फीस, जैसा मैंने अभी आपको पता ही है
1: जी,
0: लास्ट वीक 34 बंदों की फंडिंग गिरी है, 29 के पैसे आ गए, 4-5 को हमारे ऑफिस से फोन जा रहा है, वो उठा नहीं रहे, राइट, उनका भला होगा, वेरी हैप्पी विद इट
1: जी। बिल्कुल नवी भाई, बड़ी शानदार गल है, भी बंदा कहता है ना सानू उत्थे मिलो, टिम च मिलो, फलानी जगह ते मिलो, नहीं, पूरा अपना ऑफिस है, पूरा टीम बैठी है, 5-6 बंदे बैठे है, सारे वखरे वखरे कैबिन बने हैं, प्रॉपर तरीके दे नाल तुहाडा काम करदे आ, तुहाडी एलिजिबिलिटी देख के, तुहाडी प्रोफाइल देख के, ते तुसी बिल्कुल सही काम करवाओ जिहड़े सही काम कर रहे ने। ते मेन गल नवी भाई, मैं बड़ा हैरान, हुण बाकी आपां काम करवाने आ ना, बंदा पैसे रखदा फिर तुहानू दिंदा, पर इस केस दे विच गवर्नमेंट सीधी ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਓਕਰ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਾਕਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 437-264-3175 ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ 218 ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੁਲੇਵਰਡ ਇਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਵੀਟ ਨੰਬਰ 437-264-3175 ਅੱਜ ਪਹਿਰਾਵੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨੇ, 50 ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਨਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
2: ਹਾਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ,
1: ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਆਇਆ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਚ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਵੀ ਏਦਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਵੋਟਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਹੋ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਵੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ।